0: और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनिए महात्मा गांधी दे प्रेरक प्रसंग गांधी चर्चा।

एक बार बापू ने अपनी गरीबी इना शब्दां विच बयान कीती सी, मेरी कोई जायदाद नहीं है, फिर भी मैं महसूस करदा हां कि मैं शायद दुनिया दा सब तो वध अमीर आदमी हां। मेरे लिए त्याग बहुत लाहेवंद रहा है, मेरा संतोष ही मेरा सब तो वड्डा खजाना है। इसलिए शायद ये कहना ही ठीक होवेगा कि भावें मैं गरीबी का प्रचार करदा हाँ, फिर भी मैं एक अमीर आदमी हाँ। एक दिन बापू बंगाल दे एक जिमीदार दे परौने सन। उसने सोने दे बर्तना विच बापू नू दूध ते फल पेश कीते। बापू जानदे सन कि ए गरीब रायत दी कमाई तो आए सन। बापू ने पूछया, मैं इस ऐश नू किवें स्वीकार कर सकता हाँ, मैं सोने दियां प्लेटां विच खा लवां जेकर तुहाडे मुजारे घट्टो घट चांदी दियां प्लेटां विच खाण दे योग होण। जदों ओ इन्ने दुखी ने तां फिर तुहानू ए ऐश करन दा हौसला किवें पैंदा ए। एक वार बापू ने एक मंत्र दस्या सी, जदों कदे भी तुहानू किसे काम बारे शंका होवे तां तुसी उस गरीब तो गरीब आदमी दा चेहरा अपने सामने लियाओ जिहड़ा अपनी जिंदगी विच तुसी वेख्या होवे। फिर तुसी अपने आप नू पुछो कि मैं जिहड़ा काम करन लगा हाँ उस नाल उस आदमी नू की फायदा पहुंचेगा। ए सोच के फिर काम करो। बापू दियां सारियां लहरां आम जनता दी हालत सुधारन लई सन। एक बार अपने लून दे प्रसिद्ध सत्याग्रह बारे उन्हां कहा सी कि मैं मुफ्त लून दी मंग भारत दे गरीब ते अध भुखे पेंडुआं लई कीती सी। टैगोर ने बापू बारे लिखिया सी, दीपक आप बलदा ए ते होरना नू जानन देंदा ए। बापू गरीबां लई ही सारी उम्र जीए ते काम करदे रहे।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे आं खेतीबाड़ी प्रोग्राम।
1: खेतीबाड़ी

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बाल कांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए

0: एषः प्रवासः भारत आस्ट्रेलिया सम्बद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे आस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एंथनी एल्बनीस अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत आस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत आस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वैब्रेंट विलेजेस् इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजनन अधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणां अथ युग्मकोशानां नियंत्रक तंत्राणां प्रासंगिक विधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्त राज्य अमेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्य चरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवत्। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बज चुके ने, हुण तक दीआं मुख खबरां सुणो। विदेश सकत्तर विक्रम मिसरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ते आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अबानीज विचकार गहन ते बेहद उसारू गलबात ने दोवां विचकार डूंघे निजी ते रणनीतिक संबंधां नूं उजागर कीता है। भारत ते रूस ने दहशतगर्दां ते दहशतगर्द जथेबंदियां दे खिलाफ ठोस कार्रवाई का सद्दा दिता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि 2047 तक भारत नूं एक विकसित राष्ट्र विच बदलण लई बुनियादी विज्ञानां विच एक मजबूत आधार होना चाहिए।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ब्रेक तो बाद असी फिर हाजिर हाँ जी। सोहनी सवेर प्रोग्राम चल रहा है आकाशवाणी जलंधर से, तुहाडे दोस्त वीरेंद्र दे नाल, साडियां वख-वख फ्रीक्वेंसीज ते। एक बार इदां होया कि मजदूर किसी इमारत विच काम कर रहा सी, तप दी धुप सी, पसीना वहाउंदा, सख्त मेहनत करदा, उन्हें दिहाड़ी लाई। शामी जदों उन्हूं उहदी दिहाड़ी दे पैसे मिले ना, ते उन्हें उन्हां पैसिआं दे नाल अपने छोटे बच्चे दे लई एक कॉपी ते पेंसिल खरीदी। उहदा इह कहिणा सी कि मैं ते स्कूल नहीं जा सकिया, पर मैं अपने बच्चे नूं पढ़ावांगा, उन्हूं वड्डा अफसर बनावांगा। सो जी, ये जिहड़े मजदूर ने, ये जिहड़े किरती ने, ये साढ़े समाज नूं खुशहाल करदे ने। ये अपनी मेहनत नाल, अपने हुनर नाल इमारतां बणाउंदे ने, शहर विच सड़कां दा जाल बिछाउंदे ने। ये जिहड़ी शहरां दी चमक दमक है, इहदे पिछे मेहनत इहनां दी है। जे इहनां दा सिरड़ ना हुंदा, इहनां दा हुनर ना हुंदा, तां फिर वड्डियां वड्डियां इमारतां ना हुंदियां, सड़कां ना हुंदियां, फ्लाईओवरस ना हुंदे। सो जी, जिद्दां ये किरती, ये कामे, ये मजदूर साढ़े शहरां नूं, साढ़े पिंडां नूं, साढ़े देश नूं बणाउंदे ने ना, केंद्र सरकार दीआं बहुत सारीआं योजनावां इहनां दी जिंदगी नूं बेहतर बनाउण दी कोशिश करदीआं ने। ते इह बड़ा जरूरी हो जांदा है कि इहनां सारे किरती कामिआं नूं इहनां योजनावां दा पता होवे। सो अज दे सोहणे स्वर प्रोग्राम च असीं गल करदे हां असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कुंवर डावर होरां दे नाल, जो सानूं इह दसणगे कि इहनां किरती कामिआं दे लई केंद्र सरकार दीआं किहड़ीआं किहड़ीआं योजनावां ने जो इहनां दी जिंदगी नूं बेहतर बनाउंदीआं ने। सो कुंवर डावर जी, साडे इस प्रोग्राम च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। साडे सुनण वालिआं नूं दस्सो जी कि कीड़ियां कीड़ियां मुख तौर ते योजनावां ने जो इन्हां किरतियां, इन्हां मजदूरां दीआं जिंदगीआं नूं बेहतर बणाउंदीआं ने।
5: ओह जिहड़ी स्कीम दा मैं तुहानूं शॉर्ट च थोड़ा डिटेल दस दिंदा
6: जी। जी,
5: इक सब तों पहले हैगी है कि ओह अपने बच्चिआं लई वजीफा स्कीम लै सकदा। वजीफा स्कीम दा की लाभ है कि पहली क्लास तों लै के हायर एजुकेशन तक हर क्लास वाइज ओहदे बच्चिआं नूं वजीफा मिलदा है। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਈਫੰਡ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 13,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। +1 ਅਤੇ +2 ਕਲਾਸ ਲਈ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ITI, ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ANM, GNM ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 60,000 ਰੁਪਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को

0: मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इजरायली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के

0: आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका

0: इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अग्री टू ऑपरेशनलाइज देयर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट, पेविंग द वे फॉर यूरेनियम एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government forms 7-member committee to draft uniform civil code for the state.

0: तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जारी किया। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दस्सिया कि दोवां देशां ने यूरेनियम सप्लाई अते एक महत्वपूर्ण खनिज लांघे ते इतिहासक समझौतियां ते दस्तखत कीते ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक तकनालोजी ते वसीला सुरक्षा दे खेत्रां विच भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस पहलकदमी तहत आस्ट्रेलिया भारत साइबर अहम तकनालोजी ते सप्लाई चेन भाईवाली लागू की गई है। बाद विच प्रधानमंत्री मोदी ने आस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विच मेलबोर्न मीट्स मोदी समागम विच बोलदिया कहा कि भारत आस्ट्रेलिया गठजोड़ नवीं ऊंचाइया ते पहुंच गया है। 12 साल विच आस्ट्रेलिया दे अपनी तीजी यात्रा विच प्रधानमंत्री ने 10 लाख तो वध भारतीय प्रवासियों नूं दवली दोस्ती का आधार दस्या। श्री मोदी ने कहा कि भारत विच चिप्स तो जहाजा तक एक निर्माण प्रणाली विकसित की जा रही है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के तीजे ते आखिरी पड़ा ते आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचणगे। श्री मोदी अपने न्यूजीलैंड के हमरुतबा क्रिस्टोफर लक्सन नाल गलबात करेंगे। दोवे नेता समुचे दवले संबंधा का जायजा लैणगे, जिस विच पिछले 2 सालों विच अहम प्रगति हुई है, खास करके व्यापार ते वणज ते रक्षा के खेतरां विच। न्यूजीलैंड की यह यात्रा 40 सालों विच किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली में सरहदी जिलों के पुलिस सुपरिटेंडेंट की एक कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी की। सरहदी राजा ते केंद्र शासित प्रदेशों जिन्हां विच जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ते उत्तर पूर्वी राज शामिल ने, दे पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कॉन्फ्रेंस विच हिस्सा लिया। गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी कॉन्फ्रेंस विच शामिल होए। कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिया श्री शाह ने कहा कि एक सुरक्षित सरहद, एक खुशहाल सरहदी खेतर अते एक चौकस समाज रल के देश नूं सुरक्षित बना सकते ने। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश नूं पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने लई एक मजबूत प्रणाली बना रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने विज्ञानक तौर पर सरहदी बुनियादी ढांचे विच 400% वाधा किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हवाला देंदे हुए गृहमंत्री ने कहा कि इस पहलकदमी तहत प्रवास नूं रोकण, नौकरियां पैदा करन अते सरकारी भलाई योजनावां नूं 100% लागू करन नूं यकीनी बनाउण दे यतन कीते जा रहे ने। मंत्री ने भी कहा कि सरकार 1600 किलोमीटर तो वध लंबी भारत म्यांमार सरहद ते 31,000 करोड़ रुपए की लागत नाल वाड़ ला रही है। उन्होंने यकीनी बनाने की महत्ता ते जोर दिता कि सरहदी खेतरां विच असाधारण कारकां कारण होण वालियां आबादी संबंधी तब्दीलियां बारे जानकारी जमीनी पद्धर तो उच्च पद्धर तक जल्द तो जल्द पहुंचाई जाए। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के उद्देश गुजी जंग, गैर कानूनी घुसपैठ, कट्टर बनाए जाना, नशीले पदार्थों की तस्करी, ड्रोन नाल संबंधित खतरे, साइबर अपराध, संगठित अपराध और आबादी संबंधी तब्दीलियां नूं रोकना और सरहदी खेतरां नूं वधेरे रहण योग बनाउणा है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत अपने हुनरमंद कार्यबल, मजबूत संस्थावां ते नवीनता दे कारण आलमी समर्था केंद्रां GCCs लई सब तो पसंदीदा देशां च शामिल है। नवी दिल्ली विच CII राष्ट्रीय GCC व्यापार सम्मेलन 2026 नूं संबोधन करदिआं खजाना मंत्री ने कहा कि देश विच 2100 तो वध GCCs ने, जो सीधे तौर पर 23 लाख तो वध लोगों नूं रुजगार देंदे ने। एक केंद्र सालाना करीब $10,000 करोड़ का मालिया पैदा करते ने। उन्होंने कहा कि एक केंद्र इंजीनियरिंग खोज, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मालिए उत्पाद डिजाइन ते डेटा विज्ञान नूं एक थां लिया के नवीनता नूं उत्साहित कर रहे ने। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा xhandle@eirrn जलंधर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कुवैत की अपनी यात्रा पूरी करने तो बाद ओमान पहुंच गए ने। ओमान के विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल शेख अहमद अल मस्कारी ने उन्होंने स्वागत किया। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसल्स के 11 दिन दौरे ते ने। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ਈਂਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

0: प्रोग्राम चल रहा है जी, महक पंजाब दी। तुसी सुन रहे से गीत फिल्म एक कुड़ी पंजाब दी, गायक ते कलाकार अमरिंदर गिल दा गाया। अगले गीत तो पहला एक छोटा जिहा ब्रेक।
1: पापा कॉलेज दी फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस दे कुछ पैसे असी किसे होर खाते विच रखे सन?
2: दो सालां तो खाते विच कोई लेन देन नहीं होया है। हो सकता है इनऑपरेटिव हो गया होवे।
4: ता हुण बैंक जाओ जा वीडियो केवाईसी राही केवाईसी अपडेट करवाओ। खाता होवेगा एक्टिव बिल्कुल मुफ्त।

दोस्तों, जदों एक चंगे शायर दे अल्फाज़ां नूं किसे बेमिसाल गायक दी आवाज़ मिल जाती है तां एक अजिही रचना जन्म लैंदी है जो सालां तक लोकां दे दिलां ते राज करदी है। गज़ल भी अजिही एक विधा है जो इश्क, विछोड़े, उम्मीद अते जिंदगी दे हर रंग नूं बड़ी नफासत नाल बयान करदी है। इसी लड़ी नूं अगे वधाउंदे होए हुण पेश करदे हाँ एक होर यादगार गज़ल रूप कुमार राठौड़ दी आवाज़ विच।

0: नवी स्वेर, नवे गीत, नवियां खुशियां। चलो देखते हैं अगली फरमाइश किसकी आई है। हेलो जी, कौन गाल कर रहा है?
1: हेलो,
0: सत श्री अकाल जी, की हाल है?
1: मैडम जी,
0: आवाज बहुत घट आ
1: मैं
0: रही है।
1: राजू बोलता जी, चंडीगढ़ तो।
0: बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। की करते हो तुसी?
1: धन्यवाद मैडम जी, साडा भी।
0: की करते हो तुसी?
1: मेहनत मजदूरी करते हैं जी।
0: ठीक है जी। होर मौसम दा की हाल चाल है उधर?
1: मौसम मैडम जी हम तो साफ है जी, सारी रात बारिश होती रही
0: ठीक है। तुसी साडे श्रोतियां नू कोई
1: है
0: सुनेहा
1: जी।
0: देना चाहोगे?
1: श्रोतिया तो इदा ही है जी, मतलब के हरेक का भला करना चाहिए, किसी का मतलब के मदद करो जो हो सकती है, तो किसी का मतलब बुरा नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। सानू किसी दा ना बुरा सोचना चाहिए दा ते ना करना चाहिए दा। केड़ा गीत
1: ये
0: सुनोगे?
1: भला चंगा नहीं कर दे सकते, माड़ा भी ना करो।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। केड़ा गीत सुनना चाहोगे?
1: बीबी हो तो ऐसी फिल्म का गीत सुनना जी, फूल गुलाब
0: ठीक
1: का।
0: है जी। चलो जी फरमाइश पूरी करते हैं। राजू जी चंडीगढ़ तो ये सुनना चाहते ने
1: धन्यवाद जी।
0: बीबी हो तो ऐसी मूवी दा ए गीत।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी, हेलो फरमाइश, जिथे तुसी सुनते हो अपनी फरमाइश दे मन पसंदीदा गीत। कॉल करना है जी 0181 2342 173। देखते हैं जी साढ़े अगले कॉलर कौन ने। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
0: कौन गल कर रहा है जी?
1: मैडम मैं सतपाल बोल रहा लुधियाने तो।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। केड़ा गाना सुनना चाहोगे?
1: हाँ जी,
0: केड़ा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना मैडम जी फिल्म श्री फरहाद है, गुजरा हुआ जमाना, लता मंगेशकर की आवाज।
0: ठीक है जी, लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं जी यह गीत।

0: को डर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: प्रोग्राम एंजॉय कर रहे सी। हैलो फरमाइश। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। कुछ ही पला भी तुसी सुनोगे हिंदी च समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों तथा भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय कारोबारी बैठकों से लेकर प्रतिष्ठित स्थलों तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल

0: के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
1: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनते हैं जी प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनते हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। इस प्रोग्राम च अपनी फरमाइशा भेजने लई व्हाट्सएप नंबर नोट करो जी 9465560-70। रिपीट कर दें 9465560-70 ते टाइप करो जी अपने मनपसंद गीतां दे बोल, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम ते सानू व्हाट्सएप राही भेज दिओ जी। पेश है प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

गलबात सी पर तू ना समझ सकी, ए साहां दी मुलाकात सी पर तू ना समझ सकी, कुछ अणछुहे जज्बात सी पर तू ना समझ सकी, साडी कल्यां दी औरात सी पर तू ना समझ सकी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी तुहाड़ा तुहाड़े अपने प्रोग्राम धमक जलंधर पेंदी विच। अगली फरमाइश सानू भेजन वाले ने जी सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह। ये फरमाइश भेज रहे ने जी जिला संगरूर तो, कह रहे ने किसी भी पंजाबी गीत शामिल कर लिया जाए। अगली फरमाइश भेज रहे ने जी पंचकुला तो, एंजल, नेहा, अंजली, गुरमीत कौर, शुभम, लवली ते इना दे बहुत सारे साथी। फरमाइश कर रहे ने जी हरभजन मान की आवाज़ विच गीत सुना दिता जाए। अगली फरमाइश आ रही है जी सानू मुरादाबाद तो, रणवीर सिंह, गीता रानी, पायल कश्यप। अगली फरमाइश भेजन वाले ने जी फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो, गुरविंदर सिंह पांदा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांदा, जी एस रामगढ़िया। ये भी कह रहे ने जी हरभजन मान की आवाज़ विच ही कोई भी गीत सुना दिता जाए। आओ इन्हां सारयां दी रली मिली फरमाइश ते सुनते हाँ ये गीत।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% के वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10,00,000 भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
1: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहु सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
3: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि ई

0: 85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हो रहे हैं। आओ हुण सुनते हाँ जी प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार। प्रोग्राम बसते बड़े लैके अर्चना हाजिर
0: और अर्चना के नाल नाल ज्योति भी हाजिर है जी।
1: मेरी ज्योति की हाल चाल है थोड़े?
0: भी हाल चाल तो बहुत वधिया है। ते अर्चना तुसी मेरा नवा सूट नहीं हले तक देखिया।
1: मैं देखती पई सी, मैं क्या ले प्रोग्राम शुरू तो हो जाए, सारिया भैणां दे सामने इहदे सूट दी तारीफ करदे आ। मैं सूट तां इन्हां ने बहुत ही सोहणे रंग दा वी ते स्टाइल दा पाया होया है।
0: पर नवा सूट सोहना भी है, लै के तां भी मैं ना मैनू तसल्ली जी नहीं हुई, मैं खुश नहीं हाँ।
1: जी तसली दी तुसी गल कीती भी, तसली किवें हुंदी है?
0: देखो ना, मैनू लगता कि मैं थोड़ा जिहा ना महंगा ले आई अर्चना। मैं ना दुकानदार नू कुछ भी नहीं कह पाई कि भाई थोड़ा जिहा घट करो या कोई मतलब सानू
1: मोल भाव नहीं
0: मोल
1: कीता
0: भाव नहीं
1: तुसी?
0: कीता,
1: अच्छा,
0: और मैनू लगता कि मैनू करना चाहिए क्योंकि ये सूट मैनू थोड़ा जिहा सस्ता मिल सकता सी।
1: बिल्कुल तुसी ठीक आख्या कि वैसे तो इस चीज़ तो तुसी किद्दां बच गए, क्योंकि मोल भाव करना मैनू लगता साडी औरतां नू एक खास तौर ते चंगा बहुत लगता है, कि एक साडी हैबिट दे विच हुंदा। कोई भी चीज़ लैण तों पहलां असी 10 वारी कहिंदे आ कि पसंद आ जांदी है, पर जदों रेट दी गल आंदी है ते लगता है कितें फ्री खाते ही मिल जाए।
0: बिल्कुल। और देखो भैणां दा खास मन परचावा पसंदीदा जिहड़ा एक विशे असीं इहनूं कह सकदे हाँ।
1: जी
0: और वैसे अर्चना खरीदारी जिहड़ी हुंदी ना, ये एक जिहड़ा मोल भाव करना, बारगेनिंग करनी, उहदे विच एक साडा रिवायती हिस्सा है।
1: जी
0: और ये साडे दादे पड़दादियां तों ये जिहड़ी रिवायत चली आ रही है। जदों मेले लगदे हुंदे सन और
1: जी
0: सब्जी मंडियां दे विच मोल भाव हुंदे सन,
1: हाँ
0: और ये रिवायत तां है ही है, नाल दे नाल एक कला भी है जो मेरे को हुई नहीं।
1: ता ही तेनू तुसी कला दा नाम आप ही दे दिता है। जिहड़ी कला है इहदे वास्ते बड़ा ही एक बंदे नू ना एक सूझवान हो के गल करनी पैंदी है, वी गल वी कर दो, सामने वाला उहनू समझ वी जाए ते जिहड़ा मोल भाव उह वी हो जाए ते चीज़ सानू बंदे जिहड़ा उहदा है ठीक ठीक रेट दे उत्ते वी सानू मिल जाए।
0: यानी हर कोई चाहता कि भी सानू चंगी चीज़ घट पैसों दे विच मिल जावे। और देखो ना, जदों असी मोल भाव करते हाँ तो जिहड़े भैणां कहिंदियां भी नहीं सही सही लगाओ, तो दुकानदार कहिंदे भी नहीं जी ये तुहाडे वास्ते रेट है, नहीं तो यह तो बड़ा महंगा है।
1: बिल्कुल, उन्हां दी भी तां इक कला है ना भाई। जे तुसी खरीदण वाली एक कला दिखा सकते हो ते दुकानदार ने भी तां अपनी जिहड़ी चीज़ है दुकान ते कोई भी रख्या होया जिहड़ा उहदा प्रोडक्ट है उहनूं वेचना है, वेचण वास्ते उहने रख्या होया ते उहने
0: बिल्कुल
1: किस कला दे नाल वेचना है ते तुसी किस कला दे नाल उहनूं खरीदना
0: खरीदना
1: है,
0: है।
1: इह दोनों ही कला ने।
0: और देखो, और ये मोल भाव दे विच खरीदारी दे विच दुकानदार दे विच ते गाहक दे विच ना एक रिश्ता भी बन जाता है।
1: जी
0: भैणा वो भैणा कहिंदे ने तो भरा जी कहा जाता है उन्हां नूं। तो एक वाकई एक कला ही है। और असी कदों उठ के जाना है, कदों छड़ देनी ही चीज़ है, ये सारा सानू सीखना पैंदा है और आप ही सीखना पैंदा है। पर एक चीज़ का असी अर्चना ध्यान रखना है कि
1: जी
0: सस्ते दे चक्कर दे विच असी ये भी नहीं करना कि कोई बेकार जी चीज़ असी खरीद के ले आईए,
1: बिल्कुल
0: जिहड़ी वैल्यूएबल ना होवे, साडे काम दी भी ना रहे, है ना।
1: हाँ।
0: तो इन्हां चीज़ों का भी असी ध्यान रखना हुंदा है। तो एक होर गल है,
1: जी
0: कई दुकानदार ना बड़े गुस्से वाले होंगे है, उन्होंने
1: हाँ।
0: तख्ती लगाई होंगी है कि एक मुल
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: नौकरी लगी सी कि
1: हाँ
0: पिताजी का साया सिर ते उठ गया
1: हाँ जी
0: और भैणा हले छोटियां होणगियां पढ़दियां होणगियां
1: हाँ जी
0: सारिया की जिम्मेवारी तुहाडे ते पई। पर सानू ये भी पता लग्या कि तुहाडा खेतीबाड़ी वाल भी रुझान है।
1: हाँ जी खेतीबाड़ी तो फिर थोड़ा जहा पिंडा अगर जमीन थोड़ी दो सियाड़ है आ फिर उधर हो जाता कि रोटी तो बंदा बांझा नहीं रहा। खेतीबाड़ी तो यह फायदा है कि जेकर कुछ भी नहीं हुंदा तो रोटी पानी मिल जाता है। जे आप बहुत वधिया जिंदगी नहीं गुजार सकते तो बहुत माड़ी जिंदगी भी नहीं
0: गुजारते।
1: गुजारते। हाँ जी
0: अच्छा शादी पिता जी ते होंदिया ही होगी सी कि बाद चो
1: पहला
0: तुहाडी?
1: हुई उन्होंने डैथ 1973 हुई है। मेरी शादी 1971 हुई है जदों के पाकिस्तान की लड़ाई लगी सी
0: जी
1: ते ब्लैकआउट सी जदों उदों दी गल है।
0: जी ब्लैकआउट च शादी हुई तो फिर तो थोड़े जे बंदे सादा जा विआह होया होना जी।
1: ब्याह तो मतलब लाइटां कहिंदे बंद करो भंगड़े पैंदे सीगे तो कहिंदे भी ना पाओ तुसीं भंगड़े
0: जी
1: ते क्योंकि कई हमले हो रहे सीगे उदों हवाई हमले हो रहे सी। हाँ
0: जी जी
1: जी
0: और हुण जानना चाहांगे जदों बंदा नौकरी च आ जांदा है खास तौर ते जदों आपां अध्यापक हुंने आ
1: हाँ जी
0: कई सारियां ट्रांसफर्स भी देखणियां पैंदियां ने
1: हाँ जी
0: देखणियां पईयां अलग अलग थावां ते गए तुसीं।
1: नहीं इस तरह हुई है कि कोई किस्मत ऐसी हो कि मैं रेकोगनाइज स्कूल में मानता प्राप्त स्कूल जो कि सहायता प्राप्त है उधर भी नौकरी करता सी। फिर मैंने चा चढ़ा गवर्नमेंट सर्विस जमा फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस गया पर उत्थे पता नहीं कि ऐसी माड़ी किस्मत है कि 6 महीने बाद मैंने फारग करता गया कोई मेरे तो सीनियर आ गया। ये
0: अच्छा
1: थोड़ा असूल हुंदा महकमे का अगर कोई सीनियर आ जाता है कोई टैंपरेरी थी ना तो दूजे नूं लीव कर देंदे आ। मैं मुड़ के फिर पास उत्थे आ गया फिर मेरा मैं क्या हुण मैं किसे नहीं जाना नहीं मैं इत्थे रहना लागे स्कूल सीगा शाम
0: जी
1: चौरासी सीगा कुछ
0: जी
1: गतिविधियां हो गईयां ते फर्क भी ग्रेड्स वगैरह भी उही हुंदे सब कुछ रेकोगनाइज स्कूलों में गवर्नमेंट ही पैसे दिंदी 95% सरकार ही दिंदी है।
0: जी जदों शाम चौरासी की गल करिए तो फिर शाम चौरासी का मेला याद आता है
1: हाँ जी
0: तो जदों मेले की याद करिए तो फिर गुरमीत खानपुरी जी याद आते
1: हाँ
0: ने।
1: जी
0: जे गुरमीत खानपुरी जी याद आते ने तो फिर इन्हों का रेडियो नाल लगाव भी याद आता है। पहला गुरमीत खानपुरी जी रेडियो दे नाल जुड़े तो जां फिर मेलिया के सरदार बने?
1: पहला तो मैं रेडियो का चुनिया बल्कि मेले भी मैं पहला यह सोचा भी किस तरह ना ये रेडियो वाले मीडिया कर्मी है ना काश मैं इन्होंने बुलावा कभी मैं सोचा कि कभी किसी होटल बुला के इन्होंने बुला फिर मेरे अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं सीगा कि मैं
0: जी
1: किदा बोलूँगा मैं किदा कहाँगा कि मेरा कोई खड़ा बनेगा।
0: जी
1: फिर मैं कहा कि यह बहाना आ किस ढंग पहला तो मैं दो जो मेला होंगे उस तो महीना पहला अं उन्होंने मुलाकात करा टाई अप करा उन्हें थोड़ी वाकफी हो जाएगी चार्ज भी काफ़ी ले जाऊगा तो जिमें कि मैं जो कहना नहीं चाहे तुम तो भी मैं टाई अप करता रहा
0: जी
1: वो एक जे चाच करते रहे कभी फोटो मंग लाओ कभी कुछ मंग लाओ वो एक बहाना सगा
0: जी
1: कि इन्हों उसे ले जाना आ तो उन्होंने दिखाइए देखो ये किनिया बड़िया शख्सियतें आ और किन्ना बड़ा साडा माण आ
0: जी
1: तो किन्ना कुछ है साढ़े वास्ते सहित सभ्याचार कला वास्ते कलाकारों वास्ते किन्ना कुछ करते
0: अच्छा गुरमीत खानपुरी जी रेडियो नाल तां तुसीं पहलां जुड़े
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: मेले दा दिमाग विच किवें ध्यान आया कि मैनूं मेला करवाउणा चाहीदा वो भी सलामत अली नज़ाकत अली मेला?
1: मिलिया तो इदा गल हुई कि जिस तरह ना कि एक बहाना जहा बन गया भी किस तरह ना मीडिया नू मैं शामिल करना वैसे मेरे दिमाग च ये गल सी फिर मैं सोचा भी किदा करिए किदा किसी तो पूछा वो कहते एक कम हैगा तू कर सकता मैं कि गल कहते इतने सलामत अली नज़ाकत अली होया शाम रसी घराने दे आ ते वो पाकिस्तान चल जे गए है गया ते वो बहुत उन्होंने नाँ आया तुम उन्होंने नाँ से मेला करा के देखो असी एक मेला करा के देखे बड़ी बारिश आ गई सब कुछ आ गया जल्द बारिश हटी ना साढ़े प्रबंध भी इदा दे इन्नी दुनिया आ गई इन्नी दुनिया आ गई मैं कहा हूँ तो जिदा है ठीक है कि आप करा लेना हूँ तो अगे वास्ते मेले वास्ते रास्ता खुल गया। उस तो बाद 93 की गल हैगी 93 भी तो असी एक झलक सू दिस भी कि लोग आ सकते हैं तो 94 जो देखिया सैलाब भी आ गया तो
0: लोगों का हड़ आ
1: लोगों का
0: गया।
1: सैलाब आ गया हड़ आ गया तो वो कामयाबी दिस पी जल्द कामयाबी दिसी तो फिर असी उस काम शुरू करता फिर असी खास लाजमी बड़ा ये रहा कि रेडियो वाले तो दूरदर्शन वाले ये
0: जरूर
1: लिजाने
0: आने
1: आ
0: चाहिए है।
1: लिजाने भी चंगे जाने आदर भी चंगा करना पैसे उन्होंने दे सकी ज ना दे सकी साड़ी बेतों बाहर की गल सी पर जो चाह से नहीं एक बार किदा इन्होंने लिजाना आ
0: जी
1: तो तुम भी शायद सुनिया होगा जानते होंगे या तुम्हें पता भी होगा जब तजर्बा तुम्हें होया होगा
0: जी
1: कि किस तरह 1 किलोमीटर तो असी उन्होंने एक जलूस के रूप में
0: हाँ
1: लिजाया जाता सी वक्री स्टेज लगाई जाती
0: एक
1: सी।
0: स्वागत यात्रा दे रूप च तुसी उन्हां नूं लैके जांदे सी
1: हाँ जी
0: और खास तौर ते बैंड बाजे दे नाल स्वागत भी कीता जांदा सी जां ढोल वजदा हुंदा सी
1: हाँ
0: उन्हां
1: हाँ
0: दे अगे जीप दे उत्ते लैके जाणा
1: हाँ
0: बहुत

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਜਦੇ ਵੇਲੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राज्य की यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं

0: प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफ़ी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फ़र्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

इस दरमियान समाचार ते मुख समाचार अपने निर्धारित समय ते वारोवार प्रसारित किए जाएंगे। ये सन साढ़े अज दिन भर च प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: हो रही है। उधर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों च लगातार मीह पै रहा है। मौसम विभाग ने पंज जिलों कांगड़ा मंडी शिमला सोलन और सिरमौर में कुछ थावां ते भारी मीह लई येलो अलर्ट जारी किया है। सिरमौर ते सोलन जिले के सारे विद्यक अदारे अज बंद रहे। उत्तराखंड में अज भी भारी मीह जारी रहने की पेशेनगोई की गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों भारी मीह की चेतावनी जारी की है। पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लियाउण दी योजना बना रही है जो म्यारी E20 पेट्रोल अते करीब 20 रुपए फी लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 सिर्फ उन्होंने वालों लिए उपलब्ध होगा जो खास तौर पर इस ईंधन की वरतों करने तैयार किए गए हैं। भारत ते न्यूजीलैंड 2026 अपने खेड संबंधों के 100 साल जश्न मना रहे हैं। हाकी नाल शुरू हुई यह यात्रा दोवां देशों विचकार दोस्ती ते सहयोग का एक मजबूत माध्यम बनी हुई है। वेरवे नाल एक रिपोर्ट।
1: भारत अते न्यूजीलैंड विचकार खेड संबंध 1926 विच शुरू होए सन जदों भारतीय फौज दी हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड दा दौरा कीता सी। हॉकी दे जादूगर मेजर ध्यानचंद भी इस इतिहासिक टीम दा हिस्सा बने। इस दौरे नूं उनां दे अंतरराष्ट्रीय करियर दी शुरुआत मन्निया जांदा है अते एही ओह थां सी जिथे उनां ने अपने बेमिसाल हॉकी हुनर तों दुनिया नूं जाणू करवाया। एक सदी बाद भी दोवां देशां विचकार खेड संबंध मजबूत हुंदे जा रहे ने। इस साल भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑकलैंड विच मेजबान न्यूजीलैंड नूं हरा के FIH महिला नेशंस कप जीतिया। हॉकी न्यूजीलैंड के सबका मुख्य कार्यकारी अधिकारी 1976 के ओलंपिक सोन तमगा जेतू रमेश पटेल ने आकाशवाणी नाल एक विशेष इंटरव्यू च कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड फेरी दोवां देशां विचकार खेड सहयोग नूं नवी प्रेरणा देवेगी।
2: Yeah, you know, obviously they're coming for the free trade agreement signing, and that's very significant, of course. But to have sport involved as well, because I think that's very important, because it ties countries together. We play against each other both here in India and in New Zealand.
1: इस 100 साला दे खेड सफर ने साबित कर दिता है कि हॉकी सिर्फ एक खेड नहीं है, सगो भारत अते न्यूजीलैंड विचकार दोस्ती, विश्वास अते लोकां तो लोकां संबंधा दा एक मजबूत पुल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल जलंधर तो आकाश
0: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान च मेजबान इंग्लैंड खिलाफ इतिहासक एको एक टेस्ट मैच खेडेगी। मैच भारतीय समय मुताबिक दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। यह पहली बार है जदों लॉर्ड्स मैदान च महिलावां का टेस्ट मैच खेडिया जाएगा। इस 4 रोजा टेस्ट मैच में रिकॉर्ड 33,000 तो वध लोगों ने पहला ही सीटा बुक करवा लिया ने। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिना दौरे के तीजे ते आखिरी गेट च न्यूजीलैंड पहुंचणगे। पंजाब विच विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया लई सूबे भर के सारे पोलिंग बूथां ते कल तो 2 दिना विशेष कैंप का आयोजन होगा। मौसम विभाग वालों अज उत्तराखंड विच भारी मीह लई अलर्ट जारी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अज लंडन च मेजबान इंग्लैंड खिलाफ दोपहर बाद 3:30 बजे इतिहासक इको एक टैसट मैच खेडेगी। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरों का अगला बुलेटिन तुसीं सुनोगे शाम 6:20। नमस्कार।
3: आदा, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अपने हममनसब से बातचीत करेंगे। मरकज ने ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं के जाब्ते बनाने के लिए नशीली अशिया के जाब्तों में तरमीम की है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जिनसी तशद्दुद से मुतालिक तनाजे की सख्ती से मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलयकार करार दिया है। IMD ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा ओलंपिक कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और खवातीन के क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी वन ऑफ टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच गए हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे, जिसमें गुज़श्ता 2 साल में खासतौर पर तिजारत, कॉमर्स और दिफा के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। जनाब मोदी का न्यूजीलैंड का यह दौरा पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। जनाब मोदी मुमताज कारोबारी और खेलों से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे।

0: आजम अपने इस दौरे में भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का अपना तारीखी और इंतहाई अहम दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस तरह उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया जामे दिफाई शराकत दारी के लिए मुस्तकबिल की राह हमवार कर दी है। आला इख्तियाराती दफ्तरों से लेकर मशहूर जगह तक के इस दौरे से दोनों बड़े जमहूरी मुल्कों के दरमियान सिफारती, इकतसादी और सलामती से मुतालिक ताल्लुकात को फरोग हासिल होगा। वज़ीर आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज की इस बातचीत से जामे इकतसादी ताउन के मुआहदे CECA से मुतालिक मुज़ाकरात की रफ्तार में तेजी आएगी। इस दोतरफा बातचीत में माहौल के लिए साजगार तवानाई पर खास तवज्जो दी गई है, जिसके तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई के लिए बंदोबस्त को कतई शक्ल दी गई है। इस तरह 2014 के बुनियादी फ्रेमवर्क का यादा किया गया है। बातचीत में दिफाई सलामती पर भी खासतौर पर तवज्जो मरकूज की गई, जैसा कि दोनों समंदरी मुल्कों ने दिफा और सलामती से मुतालिक तावुन नीज एक आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के लिए समंदरी सलामती के इश्तराक के खाके को भी मुश्तरका ऐलानिये की शक्ल में मंजूर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात बरकरार रखते हुए वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के रहनुमा एंगस टेलर से भी मुलाकात की। उन्होंने जनाब मोदी को अपने मुल्क का एक सच्चा दोस्त करार दिया। उन्होंने बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद और पुरअमन यूरेनियम बरामदात जैसे बुनियादी इकदाम की हिमायत की। ये दौरा मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलों की सिफारतकारी की शक्ल में इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेलकूद से मुतालिक इश्तराक के खाके का भी बाकायदा आगाज किया, जिससे खेलकूद और बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा। जैसा कि भारत 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों और ऑस्ट्रेलिया 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है। तफसील हमारे नामनिकार से।
1: इस यादगार सरकारी दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की वजह से महज सिफारती सरगर्मियों ने मरबूत और कसीर सतही इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके तहत सनती कारोबार में इजाफा हुआ है, आला टेक्नोलॉजी वाले दिफाई खाकों को बेहतर शक्ल मिली है, खुआ वो न्यूक्लियाई सप्लाई का बंदोबस्त हो या MCG में खेलकूद की सिफारत हो, दोनों मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल इस्तेकाम के लिए एक राहदारी मुकर्रर कर दी है। अपने दौरे के इख्तिताम के बाद अपने तीन मुल्कों के दौरे के अगले तारीखी मरहले के तहत वजीर आजम बराह रास्त न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पहुँच गए हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: मरकजी हुकूमत ने नशीली अशिया के 1945 के जाब्तों में तरमीम की है, जिसका मकसद ज्यादा अल्कोहल पर मुश्तमिल नशीली दवाओं के जाब्तों को मुस्तहकम बनाना है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल दवाओं के लिए लाइसेंस की ज़रूरत में मौजूदा इस्तिस्ना को ख़त्म कर दिया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12% से ज्यादा एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल वो दवाएं जिनकी मकदार 30 मिलीलीटर से ज्यादा है, अब इन पर शेड्यूल के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस तरह की मसनूआत के लिए अब नशीली अशिया और कॉस्मेटिक्स कानून 1940 के तहत लाइसेंस की जरूरत होगी। भारत ने महाजराई और लड़ाई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है और उसे मुख्तलिफ तबकों पर ज्यादती, इख्तलाफ राय को दबाने और लोगों के खिलाफ जुल्म ज्यादती के लिए जंग, दहशतगर्दी, ईजा रसानी और सियासी जबर का वसीला करार दिया है। महाजराई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद के बारे में अक्वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के खुले मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि इस तरह का तशद्दुद बेरोक टोक जारी है और भारत इस तरह की वहशियाना हरकतों की सख्त मजम्मत करता है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में तस्दीक शुदा वाकयात में नुमाया इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि इज्तिमाई कार्रवाई की फौरी जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا ہے کہ صاف ستھری توانائی کی ملک کی بجلی کی مانگ کا 50% سے زیادہ حصہ پورا کر دیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ قابل تجدید وسائل سے اس مہینے کی 6 تاریخ کو بجلی کی سپلائی کا 52% حصہ حاصل ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے اسے بھارت کے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور انحصار کا ثبوت

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल

0: कुंभों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत

0: होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है ये पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहाँ कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है।

0: लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनते हाँ बरजिंदर मचला जट की आवाज़ विच एक गीत।

0: गीत सुन रहे हो।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

तेरी एक मुस्कान ने मेरे सारे सपने सजा दिते, तेरी एक मुस्कान ने मेरे सारे सपने सजा दिते। असी तां बस ख्वाब ही देखे सी, असी तां बस ख्वाब ही देखे सी, ते तू तां साडी जिंदगी नूं ही सुपना बना दिता है, ते तू तां साडी जिंदगी नूं ही सुपना बना दिता है। जी बिल्कुल, तुहाडे भेजे हुए खत इन्ने प्यारे हुंदे ने कि प्यार हो जांदा इन्हां खतां दे नाल। किन्नी मशक्कत दे नाल, किन्नी मेहनत दे नाल तुसीं रोज़ दे रोज़ जो है चिट्ठियां पाउंदे हो। ते लो जी, इन्हां ने ते स्टैंप बना के रखी हुई है ते लिखे है कोई भी गीत लिख रहे ने। रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक ते सारा परिवार। पिंड कुणियाणा तो लिख रहे ने मलकीत सिंह, मनजीत, दुपिंदर ते सारा परिवार। बक्सर बिहार तो शरफुद्दीन अंसारी ते फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराब तो वलीउल्ला अंसारी ते असमा नाज अंसारी, चमल पार्क दिल्ली तो डॉक्टर सोनम ते डॉक्टर अदीबा, सारिमपुर बक्सर तो राजेश डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी ते गुल्फ राज।

भागलपुरी। पिंड बालद खुर्द तो लिख रहे ने, यानी कि जिला संगरूर तो अश्विनी गर्ग, विनोद, पूजा ते प्रियंका। मुक्तसर तो बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत ते सारा परिवार। इन्हां सारिआं दी फरमाइश ते आपां सुना रहे जी शमप्रीत ते साथियां दी आवाज़ विच गीत है। सुन रहे तुसी प्रोग्राम साडे नाल रल मिल के चिट्ठियां मिठियां।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स ते FM 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। शाम दे 4 बज रहे ने, साड़ी दूसरी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच आओ सुनदे हाँ हुण तक दे मुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिनों के दौरे ते तीजे अते आखिरी गेड़ च अज न्यूजीलैंड पहुंचे ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सुरक्षित सरहद खुशहाल सरहदी खेतर अते चौकस समाज रल के देश नूं सुरक्षित बना सकते ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वट्सएप ने यूजर नेम फीचर नूं लागू करन संबंधी सरकार नूं अपना जवाब सौंपया। महाराष्ट्र सरकार ने सूबे लई एक सार सिविल जाबते का खरड़ा तैयार करने लई 7 मैंबरी कमेटी के गठन का ऐलान किया है।

गुर मोकाओ कीनो दान, अमोल रतन हर दीनो नाम, सहज बिनोद चोज अनंता, नानक काओ प्रभ मिल्यो।

तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई गुरबचन सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। जिस परमात्मा नू चेते कीतियां सारियां चिंतावां दूर हो जांदियां ने ते सुखां दा बसेरा हुंदा है, फिर क्यों ना ऐसे प्रभु नू हर साह दे नाल याद कीता जावे ते उसदा नाम जपया जावे। हो है अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। उस परमात्मा दा नाम कल्याणकारी ते सुखदायक है। प्रभु दा चिंतन चिंतावां दा अंत कर दिंदा।

सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द अगायन कीता सी भाई कांशी राम वहमी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का

0: निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज से DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण पेश है अज दे प्रसारित होने वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एयर एम 854 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा इह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी ते 6:20 मिनट हो रहे ने। हुण तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: जी महाराज के 695वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित विशेष दस्तावेजी प्रोग्राम तहत बीते दिन जलंधर के वख वख पिंडां विच गुरु जी के जीवन फलसफे और सिक्ख्यावां के आधार पर विशेष दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। पिंड बुलंदपुर के रंधावा मसंदा विखे विशेष तौर पर शिरकत करदिया हलका विधायक बलकार सिंह ने कहा कि सरकार वालों विशेष तौर पर तैयार वैना ते LED स्क्रीनां राही सूबे भर के पिंडां च श्री गुरु रविदास महाराज के जीवन ते फलसफे के आधार पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई जा रही है। उन्होंने दस्या कि इस विच गुरु जी दे जीवन उन्होंने महान सिक्ख्यावां समाजिक बराबरी सद्भावना ते मनुखी कदरां कीमतां नूं प्रभावशाली ढंग नाल पेश कीता गया। उन्होंने कहा कि करतारपुर इलाके विच वी रोज़ाना दो पिंडां च दस्तावेजी फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। समाणा विखे PM श्री सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल विच बिजली की बचत किवें ते क्यों करिए विषय ते जागरूकता प्रोग्राम करवा के विद्यार्थियों नूं ऊर्जा बचत बारे जानकारी दी गई। इस मौके पंजाब राज बिजली कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने हिस्सा लिया ते उन्होंने विद्यार्थियों नूं बिजली की संजम नाल वरतों करन लई वख वख विधियां अते तकनीकां बारे जानकारी दी। विद्यार्थियों ने इन्हां तरीकों नूं अपने रोज़ाना जीवन च अपनाउण दा अहद वी कीता। मौसम विभाग ने अज उत्तराखंड में भारी मीह की चेतावनी दी है। अगले तीन तो चार दिनों में हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश के दिल्ली च भी भारी मीह पैण की संभावना जताई गई है। उधर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों च लगातार मीह पै रहा है। मौसम विभाग ने पांच जिलों कांगड़ा मंडी शिमला सोलन ते सिरमौर च कुछ थावां ते भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया है। भारत अते इंग्लैंड दियां महिला क्रिकेट टीमां विचकार लॉर्ड्स मैदान च खेडे जा रहे इको एक टैसट मैच के पहले दिन के पहले सैशन विच भारत ने 25 ओवरां च 3 विकटां दे नुकसान ते 122 दौड़ां बना लईआं ने। स्मृति मंधाना 56 दौड़ां ते भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 14 दौड़ां बना के क्रीज ते मौजूद ने। दुपहर दे भोजन तों अगे दा खेड हाले खेडिया जाणा है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जिला लुधियाना विच सब रजिस्ट्रार मलौद विखे तैनात पटवारी गुरजीत सिंह नूं 3500 रुपए रिश्वत लेंदे हुए रंगे हथी काबू किया है। विजिलेंस ब्यूरो के बुलारे ने दस्या कि मुलजम नूं जिला लुधियाना के पिंड धौल खुरद के निवासी वालों दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। बुलारे ने दस्या कि शिकायतकर्ता के प्लाट का विरासती इंतकाल शिकायतकर्ता उसके परिवार को तब्दील किया जाना सी। मुलजम ने दस्तावेज लै ले इंतकाल करवाने 5000 रुपए की रिश्वत मंगी। इस मामले अगलेरी कार्रवाई जारी है। आखिर च खास खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दो दिन दौरे तहत ऑकलैंड पहुंचे। व्यापार निवेश सिक्ख्या तकनोलॉजी आपसी संबंधों में सहयोग को होर मजबूत करने के तरीकों से चर्चा करने की उम्मीद। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ में वख वख थावां ते बूटे ला के वन महोत्सव 2026 की शुरुआत की थी। पंजाब विच वोटर सूचियां की विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया लई सूबे भर के सारे पोलिंग बूथां ते कल तो दो दिन विशेष कैंप लगाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WhatsApp ने यूजर नेम फीचर नूं लागू करने संबंधी सरकार नूं अपना जवाब सौंपिया अते मौसम विभाग वल्लों अगले तीन तो चार दिनों विच हरियाणा चंडीगढ़ ते हिमाचल प्रदेश विच भारी मीह पैण की पेशीनगोई। इस दे नाल ही प्रदेशक खबरां खत्म हुईआं। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 7:30 ते। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगा हर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ये जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले शाम दे 6:30 हो रहे ने। लो हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: आजो आजो बाल साहब आजो।
1: दरबारी साहब जय हिंद जी।
0: जय हिंद जी जय हिंद जी। और सुनाओ बाल साहब।
1: हाली चाली वाह वधिया चढ़दी कला, तुसी सुनाओ।
0: बिल्कुल ठीक है जी। देखो यही जड़ी तुसी गल कीती है ना, भी तुसी सुनाओ।
1: हाँ जी
0: असी देखो ये चीज़ सुन के ना बहुत खुश होने हैं,
1: जी
0: लेकिन इंसान जिंदगी च ना कोशिशां करते करते करते कितने ना कितने पहुंचता, जदों
1: जी
0: उदों फिर

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज, DRM 864 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगा हर्ट्ज, FM बैंड 100.9 मेगा हर्ट्ज, FM बैंड 103.6 मेगा हर्ट्ज आकाशवाणी अमृतसर अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ये जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले शाम दे 7:03 हो रहे ने। हुणी थोड़ी देर तुसी सुनोगे खबरां।

नाथ टैगोर ने अपनी एक नज़म में आकाशवाणी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, यानी इस लफ्ज़ को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और लफ्ज़ की तायद की। 8 जून 1936 के रोज़ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो का इस्म अख्तियार किया। महज 14 माह बाद अगस्त 1937 में सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ख़ुद को मंजरे आम पर लाई और उस साल ऑल इंडिया रेडियो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के तहत लाया गया और इसके 4 साल बाद ऑल इंडिया रेडियो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत काम करने लगा। जब मुल्क हिंदुस्तान को अगस्त 1947 में तकसीम किया गया तो हिंदुस्तानी हिस्से में सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन थे, जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली में मुकीम थे। पाकिस्तान हिस्से में 3 रेडियो स्टेशन लाहौर, पेशावर और ढाका में हाजिर थे। उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो की वसत महज 2.5% इलाका तक महदूद थी और सिर्फ 11% आबादी इसकी तहवील में आई थी। 1948 में सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को 2 हिस्सों में मुनकसिम किया गया और वो 2 हिस्से थे, न्यूज़ सर्विस डिवीज़न और एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न। 1956 में आकाशवाणी नाम नेशनल ब्रॉडकास्टर के लिए मौजू समझा गया। विविध भारती सर्विस का एहतमाम 1957 में किया गया और इसकी बुनियाद में था एक मकसद, आवाम की पसंदीदा फिल्मी गीत। ऑल इंडिया रेडियो ने जो कामयाबी हासिल की दुनिया के तूलो अर्ज़ में एक मिसाल के तौर पर समझा गया। आज ये फैलाओ 591 रेडियो स्टेशन तक अपना जलवा बखेर रहा है और मुल्क हिंदुस्तान का 92% हिस्सा इसके जादुई असर की लपेट में है। रेडियो स्टेशन की तादाद ज़रूरत के मुताबिक लोगों तक रसाई की नस्बत से घटती बढ़ती रहती है। लद्दाख में 13,300 फुट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन है, जिसका नाम है होम टिकला आकाशवाणी। आज ये देव का कद ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 23 जुबानों और 146 इलाकाई लोगों की बोलचाल की बुनियाद से मुख्तलिफ सामाजिक आर्थिक पहलुओं के अलावा लोगों की तहजीब व तमद्दन को भी अपने ज़ेर असर लिए हुए है। एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न 11 हिंदुस्तानी और 16 विदेशी जबानों में अपना प्रोग्राम नशर करती है, जो तकरीबन 100 ममालिक के लोगों को अपनी नशरिया खूबियों से मालामाल करती है। ये नशरियात मुल्क के हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को मुल्क की तरक्की से बाखबर रखती है और उनकी तफरी का भी एक मौजू ज़रिया बनती है। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सर्विस डिवीज़न हर रोज़ तादादी 647 नशरी खबरनामे लोगों तक पहुँचाती है, जिस काम को सर अंजाम देने में तकरीबन 56 घंटों का वक्त दरकार होता है। इस प्रोग्राम को नशर करने के लिए 90 जबानों और मुख्तलिफ इलाकाई जबानों का सहारा लिया जाता है। ये नशरी खबरनामा मुल्क के अवाम, इलाकाई और दीगर सर्विसेज को अपनी तहवील में लिए होता है। 314 न्यूज़ हेडलाइंस एक एक घंटा के वक्फा के साथ 41 इलाकाई ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से FM यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की वसासत से दर्शक किए जाते हैं। 44 इलाकाई न्यूज़ यूनिट्स रोज़ाना 469 न्यूज़ बुलेटिन्स 75 जबानों में लोगों तक पहुंचाती है। इसके अलावा न्यूज़ सर्विस डिवीज़न मुख्तलिफ मौजूआत पर दिल्ली और इस गिर्दोनवा के इलाकाई न्यूज़ यूनिट्स से लोगों को मालामाल करती है। ऑल इंडिया रेडियो अपने FM चैनल से लोगों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और इन्हें AIR FM रेनबो का इस्म दिया जाता है, जो शहरी आवाम को ख़ास तौर पर अपने ख़ास अंदाज में सकून अता फरमाता है। इसके अलावा वो 4 FM चैनल्स जिन्हें AIR FM गोल्ड कहा जाता है, मिली जुली खबरों से आवाम को सुकून देता है। ये प्रोग्राम दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई से नशर

होते हैं। एफएम वेव मुल्क के हर हिस्से को अपने पहलू में जगह देती है और इलाकाई स्टेशन से भी आवाम को आराम बाम पहुँचाती है। मरकजी सरकार के हालिया फैसले के मुताबिक डिजिटल मोड ट्रांसमिशन की ज़रूरत है बदलते वक्त के मद्देनज़र, लेकिन ये बदलाव आहिस्तगी से होना दरकार है, कदम बा कदम। डिजिटाइजेशन की वसातत से आवाम को बीते वक्त की निस्बत बेहतर और बेहतरीन सर्विस की उम्मीद करनी चाहिए। अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसलू अकलबंदी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ज़माना आ गया है, और इसके लिए कहना वाजिब होगा, बदलती है कदरें बरंगे ज़माना, फसाना हकीकत हकीकत फसाना, अब तक सुनाता रहेगा ज़माना। कही गई सब बातें ज़रूरी थीं और ज़रूरत के मुताबिक कह भी दी गईं। ऑल इंडिया रेडियो ने हर शोबे में कामयाबी का परचम लहराया। जंग आज़ादी के दौरान प्राइवेट रेडियो ने अपना काम किया और आज़ादी के दीवानों ने इस मौसर तरीक़े का फ़ायदा भी उठाया। मिसाल हाजिर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन रेडियो स्टेशन की वसादत से आवाम में जज्बाए हुब्बुल वतनी का चिराग रोशन किया, और ये कह कर के कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनके कांग्रेस और मुस्लिम लीग रेडियो स्टेशन ने मुल्क की आज़ादी की खातर एक मखसूस जज्बा पैदा किया। वैसे तो महात्मा गांधी और सुभाष बोस में सियासी सतह पर इख्तलाफात रहे थे, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब ये इख्तलाफात एक झटके में काफूर हो गए। वो दौर था 1942 का, जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया का नारा बुलंद किया। तब नेताजी ने कहा था, टुडे देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन माई थाट्स एंड देट ऑफ महात्मास, बट टुडे माई वर्ड्स बी टेकन एज वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी। शायद इसका मतलब है कि नेताजी ने महात्मा गांधी जी को अपने से ऊपरी सतह का लीडर मान लिया। ऑल इंडिया रेडियो ने तरह तरह के तजर्बों की वसातत से खुद को आवाम की नज़रों में ध्रुव तारा बनाया। जहाँ शास्त्रीय संगीत को ऊंची सतह पर मामूर किया, वहाँ खेल संसार की बढ़ती ताकत को भी मुनासिब सतह पर पहुँचाया। अंग्रेज़ी में मेलविल डी मेलो का अंग्रेज़ी कमेंट्री और श्री जसदेव की हिंदी कमेंट्री आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। ऑल इंडिया रेडियो का दायरा पहुँच महदूद नहीं है। अलग अलग मौजूदात पर जहाँ वार्ताकारों को अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका फराहम करता है, बहस मुबादला के लिए नामी गिरामी शख्सियतों को मद्दू किया जाता है। आज अगर जय कृष्णमूर्ति का फ़लसफा जेरे बहस है, तो कल अल्लामा इकबाल और सरदार अली जाफरी की नज़मात पर गुफ्तगू होती है। कभी सादत हसन मिंटो गुफ्तगू का मुद्दा बनता है, कभी उर्दू अखबारात का किरदार जंग आज़ादी के दौरान पर गुफ्तगू होती है, तो कभी नामवर उद्वा को इंटरव्यू का नमूना हाजिर होता है। ऑल इंडिया रेडियो एक पुल का सा काम करता है मुल्क हिंदुस्तान के लोगों का दिल से दिल मिलाने के लिए। जहाँ गीतांजलि का गान होता है, वहाँ सुब्रमण्यम भारती के नज़्मात पर भी चर्चा होती है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों में प्रोग्राम अक्सर होते रहते हैं। जहाँ विलियम शेक्सपियर की 154 सॉनेट्स का जिक्र होता है, वहाँ हेमलेट नाटक में भी बहस का मौजू बनता है। अब क्या कहिए कि क्या क्या नहीं है आकाशवाणी। इख्तिताम के तौर पर चंद गानों का जिक्र करना चाहूँगा जो आज भी आवाम के दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। ए कातबे तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। बेगम अख्तर का गाया हुआ, इस इश्क के हाथों से हरगिज़ न मफर देखा, उतनी ही बड़ी हसरत जितना भी उधर देखा। तानसेन फिल्म का एक गाना, बरसो रे काले बादल वा पिया पे बरसो, जैसे मोरी अखियां बरसे, बरसो रे काले बादल वा पिया पर बरसो। सुरेंद्र कौर का गाया हुआ, बाजरे दा सिट्टा सतली ते मरोड़िया, रुसिया जांदा माही असा गली विच्चों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो, वतन की राह में। कहाँ कहाँ तक तहरीर में लाऊं आकाशवाणी की मसरूफियात को, तरक्की की राह पर कभी थकती ही नहीं। मंजिल कहाँ है इसे खुद भी मालूम नहीं, बस

0: मालूम है अगर इसे तो ये कि चलते ही जाना है वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, और परचम लहराना है कामयाबी का ये कहकर कि ये आकाशवाणी है।
1: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਰੰਗ। ਲਓ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਜ਼ਲ।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी हसीन है प्रोग्राम चल रहा है, और ज़िंदगी हसीन है प्रोग्राम दे विच हुण अगली असी गल करदे हां कि जिहड़ी शुरुआत है ना ज़िंदगी बदलण दी, ओह साडे खुद तों हुंदी है। सब तों पहलां सानूं अपने अंदरला दरवाज़ा खड़काउणा पैंदा है कि जो मैं कर रहा ठीक कर रहा, और उस तों पहलां सानूं अपने आप दे नाल यारी लाउणी पैंदी है कि जो भी मैं कर रहा क्या कोई इहो जिही चीज़ तां नहीं कि जिहड़ी मेरे ते हावी हो रही है। सो अज तो की बदल सकते हैं, पहला सवाल असी अपने आप नू करना है। किसी होर दे उत्ते किसी होर दी गलती कढ़न तो पहला असी अपने आप नू कुछ सवाल करने हैं, कुछ अपनी आदतों उत्ते सवाल करने हैं। चलो अज इस प्रोग्राम दे विच असी कुछ वादे करते हैं अपने नाल। पहला वादा कि हर रोज़ घट्टो घट्ट एक बार दिलों ज़रूर हसोगे, खुल के हसना है, खुशी मिले जिस दे नाल। दूसरा वादा कि अपने परिवार नाल कुछ समा जरूर बिताओगे। तीसरा वादा मोबाइल तो वध लोकां नाल गल्लां करोगे, क्योंकि मोबाइल सानू लोकां नाल जोड़न तो मिलन तो बहुत ज़्यादा रोकती है, दूर करती है। कई बार इहो जिहा हुंदा, मैं इहो जिहा मौका देखदा वा, कई बार टाइम इहो जिहा हो जाता कि असी एक कमरे दे विच चार जी बैठे हुंदे, चारों दे चारे अपनों अपने फोन ते लगे हुंदे आ, जिहड़ा कि बहुत गलत है। असी भावें शरीरिक तौर पर आपस बहुत लागे बैठे हुई है, पर दिमागी दिली तौर दे उत्ते बहुत दूर हुन्ने आ, किसी होर ही दुनिया च बैठे हुन्ने आ, फोन चलाते हुन्ने आ। सो बहुत गलत चीज़ है जिहड़ी कि किसे नाल दा की मिलना, असी अपने आप तो दूर जाई जाने पे आ। इस तो अगला वादा जिहड़ा खुद नाल असी करना है कि हर रोज़ किसी एक व्यक्ति की जरूर मदद करनी, लोड़बंदी मदद करनी, तुहानू इन्ना सुकून मिलेगा ना, तुसी अजमा के देखियो। पर सब तो पहली गल है कि तुसी अपने नाल वादा करना है कि तुसी एक इंसान की मदद जरूर करनी है, किसी की भी। और अखीरला वादा, सोण तो पहला तीन चंगियां गल्लां याद करनी है, कोई भी तीन चंगियां गल्लां जिन्हों याद करके थानू खुशी मिले। बस ये पांच वादे तुसी करने इस प्रोग्राम दे विच, क्योंकि असी जिंदगी हसीन बनानी है, प्रोग्राम का नाम भी जिंदगी हसीन ही है, तो असी घबराने की सानू कोई लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि आकाशवाणी का जिहड़ा ये विहड़ा थोड़े लिए हमेशा खुला है। हर रोज़ जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दे विच आपां बहुत सारिया गल्लां बातें करते हैं। लो जी, इस प्रोग्राम दे विच हुण अगला गीत थोड़े सामने पेश करन जा रहे हैं, आनंद माणो जी इस गीत का।

दोस्तों, जिंदगी कदे भी पूरी तरह आसान नहीं हुंदी। हर एक दिन एक मुश्किलां नाल मौकियां नाल भरिया हुंदा है। कदी मुश्किलां आउंदियां ने ते कई बारी औखे पेंडे हुंदे ने, पर घबराउण दी कोई लोड़ नहीं। बारिश तो बाद इंद्रधनुष नज़र आउंदा है। अपने सुपनियां ते विश्वास रखो, अपने परिवार नाल प्यार करो, अपनी सेहत दा ख्याल रखो, अपना हर दिन अपने नाल एक विश्वास रखो, अपने नाल वादा रखो और अपने आप नूं कहो कि जिंदगी सचमुच हसीन है। सो इस नाल ही एक जोश दे नाल जोश भरिया एक गीत सुनते हैं जी, और कुछ टाइम बाद इस प्रोग्राम का जिहड़ा समा भी खत्म हो जाएगा। इस प्रोग्राम का अखीरला गीत, आनंद माणो जी इस गीत का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55%

0: की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या

0: मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 पैसे पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को

0: 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली की यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busedi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness a performance by the Nad Vocal Ensemble.

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम सरगम चल रहा है और तुसी आनंद मान रहे हो गीत संगीत का। दोस्तों संगीत वो भाषा है जो बिना शब्दों के भी दिल की हर गल कह जाती है। ये कदे यादां नूं ताज़ा करती है तो कदे चेहरे ते मुस्कान लियांदी है ते कई कदे तां मन नूं सुकून दी ठंडी छां बख्शती है। सो अज इस प्रोग्राम दे विच असीं लगातार तुहानूं गीत सुना रहे हैं ते इन्हां सुरीले सुरीले गीतां दा तुसीं आनंद माण रहे हो, इन्हां नूं महसूस कर रहे हो, इन्हां दे शब्दां संगीत नूं तुसीं अपने अंदर महसूस कर रहे हो। सो इस दे नाल ही इस प्रोग्राम नूं होर अगे वधाउने आ ते तुहाडे सामने हुण पेश है अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, हुण वेला हो गया है प्रोग्राम सरगम तो इजाजत लैण दा। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, TRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.6 100.9 MHz, FM बैंड 100.9 MHz अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ये चलंदर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो की कड़ी ते 11 बज रहे ने। हुणी थोड़ी देर तुसी सुनोगे समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया।

0: किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister

0: जी सौण दा महीना होवे, पैंदी बरसात होवे, सजना ने आना होवे ते पहली मुलाकात होवे, इहो जे दिन प्यार मुहब्बत दे सब दे वेड़े आण, सारिआं दे दिलां दे विच ऐसियां ही खुशियां दीआं चड़ियां वी लगन जी, साडी इसे ही उम्मीद दे नाल ते इसे ही तुहाडे लई दुआ दे नाल इस प्रोग्राम दी अज कीती है शुरुआत। ये महीना बड़ा सौन का महीना जो चढ़ेगा, मानसून तो जोड़ा है वह आ ही गया जी, तो सौन का महीना साडा चढ़ेगा तो चढ़िया जड़िया ने होर सोहनिया लगनगियाँ, तो धरती भी ठंड पवेगी जी, साढ़े दिल में भी ठंड पेगी। जिमें प्रोफेसर मोहन सिंह लिखते हैं ना कि भाई बदलों के डोले चुकी पौन दे कहर आई, वर्खा की वोटी जुल्फा कालियाँ तो शाह कस्तूरियाँ गवाह भुले राइया नूरा, कन्नी कणिया दे चुमके नक बिजली दी नथ, प्रथम नार वांग नंगी पिंड दी जूह विचों लंघी। तो वह भी लाइना मैं बड़िया सोहनिया याद ने, वेखो परबतों दुआले घिर गए मेघ काले काले, बागों विच कूक छिड़ पई मोरां दी जान खिड़ पई। कविया ने बड़िया सोहनिया बातां, बड़े सोहने गीत लिखे ने इस महीने ते, ते गीत दे नाल असीं शुरुआत की है जी। एक बार फिर तो प्रोग्राम सौगात विच तुहाडा कर रहे हैं, सारे का स्वागत। तो बड़े ही मैसेजेस जिहड़े ने साडे तक पहुँच चुके ने हुण तक, तो होर भी आने ने जी, उन्होंने भी उड़ीक है। तो स्वागत करते हैं जी मुकेश कश्यप जी, तो उन्होंने परिवार का, शीतल कश्यप जी, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक, बलवीर सिंह जी, ये सारे जुड़े ने जी, जिला मुरादाबाद, पिंड दुलापुर, उत्तर प्रदेश तो इन्हों का कर रहे हैं जी बहुत बहुत स्वागत। तो साढ़े को इंद्रजीत मंगा, तिनी रमंगा जी पिट्सबर्ग कैलीफोर्निया तो भी सुनेहा भेज रहे हैं। बिल्कुल जी, तुहाडी सौगात पहुँच गई है, जरूर जल्द ही तुहाडी इस वट्सएप की फरमाइश में मैं एक गीत फोन लाइन दे तो बाद फरमाइश तुहाडी करांगा जरूर पूरी। तो नमस्कार आदाब भेज रहे हैं जी आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा, बीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरव शर्मा, साना शर्मा, तो निवान शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैस गेट नाभा तो सोमदत्त नाभा, कैरव नाभा, ज्योति राणी, गुरमन्नत, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा भी जी। प्रोग्राम दे विच शामिल हो रहे हैं जी सुरेंद्र संधु जी, अनीता संधु जी, रोहित संधु, रितेश संधु, प्रतीशा संधु अते मैक्स, कुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार ते शुक्रिया प्रोग्राम दे विच तुसी शामिल होयो जी। निघा स्वागत करदा हाँ तुहाडे सारे दे, साडे फोन लाइन दे जरिए भी जी साडे पहले कॉलर जुड़े ने, स्वागत करते हैं उन्हों का प्रोग्राम स्वागत जी।
1: हेलो
0: जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा प्रोग्राम स्वागत दे विच, ते तुहाडे इलाके विच पै रहा मी
1: बिल्कुल जी, आज जड़ा तुसी जाना लाया वाकई ओ मंगे हुणे जे अंदर करे ने ते फिर बाहर कड़े ने, अंदर जाने ते गर्मी लगदी ते जे बाहर ते नीत लगदा।
0: हां जी बिल्कुल, बस हुण ते यही है जी, ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਮੌਸਮ ਆਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਰਾਤ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ठीक है, कोई सोनी का गीत सुना दिए, मिर्जा या पूरन भगत का किस्सा भी उन्होंने बड़ा सोहना गाया है या बोलियां। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो मिर्जा सुन दें फिर। शुक्रिया बहुत बहुत फोन लाइन के जरिए जुड़े दे रहे, सुन रहे हैं जी मुहम्मद सदीक की आवाज़ के गीत। तो मेरे दिमाग च एक ख्याल आया जी कि स्रोते सारे फोन लाइन लिए भी जुड़ रहे हैं, तो वट्सएप

0: प्रोग्राम चाले जी स्वागत साढ़े अगले फोन कॉलर साढ़े नाल जुड़ चुके ने और कर दिया उन्हें दस स्वागत जी प्रोग्राम स्वागत
1: हेलो, सत श्री अकाल हरप्रीत जी।
0: सत श्री अकाल जी की हाल चाल
1: बहुत वधिया, होर तुसीं सुणाओ?
0: बहुत
1: चंगा
0: वधिया
1: हाल
0: जी।
1: मौज
0: कौन ते
1: लेना।
0: कितों गल कर रहे हो जी?
1: श्री गुरु रविदास नगर मलोट तो रसगनिया जी।
0: जी रसकनिया जी बहुत बहुत स्वागत। ते किवें तुहाडे इलाके दे विच किवें झड़ी लगी?
1: नहीं, इत्थे तां जी इक कड़ी नूं दस रहे। वैसे मौसम अज बणिया तां सीगा, पर ओ आई नहीं बारिश।
0: पै जाएगा जी। बस
1: नहीं, हाँ
0: 12 तरीक
1: कोई
0: तक तां
1: किसी
0: क्या
1: नूं
0: भी
1: मंत्र
0: सी
1: मुंत्र मारो तुसीं कोई।
0: जी, 12-13 तरीक तक कह रहे सीगे जी सारे इलाकियां च बह जाने मी।
1: हाँ जी,
0: ते चलो वधिया गल आ। ते
1: चलो हरप्रीत जी, अज मेरे बर्थडे दे उत्ते सारे दोस्तां नूं बहुत बहुत
0: वाह वाह जी,
1: मुबारकां
0: अज
1: जी।
0: तुहाडा जन्मदिन।
1: हाँ जी,
0: लो जी बेत बहुत बहुत मुबारकां जी तुहानू।
1: मैं लगता केक मिल गया होना तुहानूं।
0: जी मिल गया मिल गया। हाँ हुणे बस मिलिया।
1: मिल गया, ठीक
0: और
1: है
0: जी,
1: ठीक है,
0: ते असीं हुण
1: थैंक यू।
0: गीत तुहाडी जरूर फरमाइश दा चलावांगे ते उदे उसे विचले टाइम च आपां खा लेना केक।
1: हाँ जी,
0: ते
1: ठीक
0: बहुत
1: है।
0: बहुत मुबारकां
1: गीत
0: जी,
1: अज
0: ते
1: दस तुसीं अज
0: तंदरुस्तियां
1: मेनू दस
0: खुशियां दे नाल
1: तारीख
0: जीवन
1: हाँ
0: तुहाडा
1: जी हाँ
0: भरिया
1: जी
0: रहे।
1: हाँ जी
0: मैं कह रही तंदरुस्तियां दे नाल खुशियां नाल तुहाडा जिहड़ी जिंदगी है वह हमेशा भरी रहे
1: हाँ जी हाँ जी, थैंक यू तुहाडा बहुत
0: जी। ते हाँ जी तुसीं कुछ कह रहे सी, दसो।
1: बहुत। गीत मैनू वो सुना दियो, दरदार सिंह डमर नू जी दा कालियां कटावां जी।
0: कालियां कटावां, लो जी अज फिर आप
1: हाँ जी,
0: भेज ही देनियां कटावां तुहाडे वल।
1: कोई नहीं,
0: लो जी बहुत बहुत शुक्रिया। ते एक बार फिर तो जी साडे सारे परिवार वालों साडे सरोते जिहड़े आणगे उन्हां वालों भी तुहानूं बहुत बहुत जन्मदिन दियां मुबारकां।
1: ठीक है जी।
0: शुक्रिया जी इहनां दा। ते लो जी सुणदे हां गीत दीदार सिंह ते अमर नूरी दी आवाज़ च।

लाल चल जमने लड़जी दी आवाज़ सुन सी जी गीत ते प्रोग्राम चल रहा है सौगात साढ़े अगले फोन कॉल जुड़े ने साढ़े करते हैं उन्होंने गल स्वागत जी थोड़ा बहुत बहुत जी नमस्कार स्वागत जी थोड़ा जी राजू जी स्वागत थोड़ी आवाज़ थोड़ी घट आ रही है जी बहुत मेरी आवाज़ पहुँच रही थोड़े तक नहीं जी कोई कोई इस तरह लग रहा जिवें तुसीं यहाँ रेडियो दे सेट दे कोल बैठे हो या कोई मौसमी खराबी हो सकती है। हाँ जी मेरी आवाज़ पहुँच रही थोड़े तक जी किहड़ा गीत सुनोगे जी मैनू लग रहा मेरे तक आवाज़ पहुँच रही है पर बहुत घट स्रोतियां तक पहुँचेगी कि नहीं। पर राजू जी बोल रहे हैं चंडीगढ़ तो जी साडे नियमित स्रोते ने तो मनमोहन वारस की आवाज़ से गीत सुनना चाह रहे हैं तो इन्हों की फरमाइश कर दें पूरी मेरे तक आवाज़ जो भी पहुँची मैं इन्ना की समझ पाया जी शुक्रिया फोन लाइन के लिए तो फोन करन के लिए जी लो तुहाडी फरमाइश तो मनमोहन वारस की आवाज़ सुन रहे हैं जी ये गीत

0: प्रोग्राम चल रहा है जी स्वागत है सुन से गीत मास्टर सलीम दी आवाज़ च साढ़े फोन कॉलर अगले जुड़े ने जी कर दिया उन्होंने गल स्वागत जी बहुत बहुत थोड़ा
1: हरप्रीत जी सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल जी की हाल देसराज जी
1: बहुत बढ़िया ने जी देसराज ड्राइवर तहसील टवाणा जिला फतेहबाद हरियाणा तो जी
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम च दसो फिर अज केड़े गीत दी फरमाइश प्रोग्राम च शामिल हो रहे हो ते लो सुन दे फिर
1: जी
0: लो जी फिर सुन दे जी इन्हां दी फरमाइश ते गीत ते

सुन रहे जी प्रोग्राम स्वागत ही करी फिर तो शब्द करदा स्वागत मैं हरप्रीत।

जी बिल्कुल, बड़ा चंगा सबक भी सी ते बड़े मजाके अंदाज च हासो एक हासिया रंग दा गीत सुनया जगजीत सिंह जी दी आवाज दे विच। ते सुनदे हां जी साडे नाल अगली फरमाइश लैके केड़े साडे फोन कॉलर पहुंचे ने साडे तक, जी जानदे उहनां दा हाल चाल भी। स्वागत जी तुहाडा।

सुनेजी प्रोग्राम स्वागत इस वेले रह गए जी केवल तो केवल 10 मिनट का समा प्रोग्राम की करा समाप्ति ते गीत संहिता पर सिलसिला इस तरह ही अगले समय के यानी कि पंजाबी मेलोडियस गीतों की झड़ी के जारी रखा जुड़े रहना जी तुम इस तरह ही गीत संगीत की इस महफिल के नाल।

0: चलो जी, प्रोग्राम स्वागत। आखिर दे कुछ 5 मिनट बाकी ने तो साढ़े फोन कॉलर जुड़े ने जी, रघु कर दिया उन्होंने गल। स्वागत जी थोड़ा बहुत बहुत।
1: सर जी प्यार सत्कार भरी रेडियो स्टेशन जलंधर गुरु सत श्री अकाल
0: जी। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल?
1: ठीक ठाक जी, बाबा नानक थोड़े की कृपा करे, अमृत वेला हो गया जी पहुंचने वाला जी।
0: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी तुहाडा प्रोग्राम च शामिल होने लई। ते साडे कोल रह गए ने केवल 4 मिनट, दसो फिर अज किहड़े गीत नाल, अज तुहाडी आवाज़ नाल, तुहाडी कॉल नाल कर रहे हां प्रोग्राम दी समाप्ति।
1: हां जी, कलियां दे बादशाह श्री कुलदीप मानक साहब दा सवादी माड़ा जिहा पहला गाओ जी। अद्धा
0: गाओ गाओ जी, जरूर पूरा गाओ।
1: नित बंबई हो पठान कोट जावे यार आंदा ट्रक बल्लिए ओ जीटी रोड ते हाई रोड ते
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी। ते लो जी फिर ताड़ा गीत अद्धा तुसी गाता, बाकी आपां सुणा आंदे आ। जी सत श्री अकाल जी। लो जी, इन्हां दी फरमाइश दे नाल इस गीत दे नाल कुलदीप माणक जी दी आवाज़ नाल कर रहे हैं प्रोग्राम दी समाप्ति। सारा दा बहुत बहुत धन्यवाद।

गई, होय होय होय होय मंगनी हो गई, होय होय होय होय मंगनी हो गई, सुन कुड़िए नी साडी मंगनी हो गई, सुन कुड़िए नी साडी मंगनी हो गई, सुन कुड़िए नी साडी।

तप तप लोह लोह हाथ मरोरा, बावल हुई सो सौ लोरा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बलदेव सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। जिहड़ियां जीव रूपी इस्त्रियां दे हिरदे विच प्रभु प्रेम दी तांग है, अकाल पुरख उन्हां दे हिरदे दी वेदना ते दर्द नूं जान लैंदा है। राग गौंड विच साहिब श्री गुरु रामदास जी फरमाउंदे ने, मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जानै, मेरे मन अंतर की पीर। इस शब्द का गायन कीता है भाई शमंदर पाल सिंह ते उन्हां दे रागी।

0: मेरा मन प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन हर प्रब जाने मेरे मन अंतर की पीर। इस शब्द का गायन कीता सी भाई शमिंदर पाल सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: गौंड महला चौथा। हर दर्शन कौ मेरा मन बहुत तपता है, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। रहाओ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। ए पाक पवित्र शब्द धन श्री गुरु रामदास जी दी रसना तो उचारण कीता होया। श्री गुरु ग्रंथ

साहिब जी दे मुबारक अंग 861 ऊपर राग गौंड विच सुवायमान है। इस पावन शब्द दी विचार इस प्रकार है। गुरु पंथ विच शब्द विचार करन लई एक सलीका है, जो गुरबाणी दे प्रेमी विद्वान गुरमुख प्यारियां ने दसिया है कि जदों तक शब्द दा मुख भाव समझ विच ना आवे उतना चिर शब्द नो विचारना जानना मुश्किल है। धन गुरु रामदास जी इस शब्द दा मरकजी भाव रहाओ दे पद विच उचारण करदे हन। इस लई इस पावन पवित्र शब्द दी विचार रहाओ दे बंद तो ही आरंभ करिए। मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, परमात्मा दा प्यार मेरे मन विच तीर दी तरह लगा होया है। हमरी बेदन हर प्रभ जानै, मेरे मन अंतर की पीर। उस प्रेम दे तीर दे कारण पैदा होई मेरे मन दे अंदर दी वेदना, भाव पीड़ा नू मेरा हरी मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर जानदा है। क्योंकि इस पीड़ा दा देन हार भी ओ परम पिता परमात्मा आप ही है। दरअसल जिहड़ा रब दा प्यारा प्रभु जी दी सिफतों सलाह प्रेम विच भिज के करदा है, ए प्रेम दा अनियाला तीर उसे दे ही मन नू हिरदे नू विनदा है। अजीबो गरीब विचार यह है कि हर एक इंसान नू ए प्रेम दा तीर प्रभु नहीं मारदा। धन गुरु रामदास राग आसा विच फुरमाउंदे हन, हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे, जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। भाव हरि प्रभु जी ने चरना दिया प्रेम प्यार पैदा करन वाली गुरु सहबाना दी रसना तो उचारण कीती होई बाणी, इस बाणी ने मेरा मन विन दिता है। भाव गुरु शब्द द्वारा मेरा मन इस तरह विन्या गया है जिवें त्रिखी नोक वाले अनियाले तीर किसी शरीर नूं विन देंदे हन। जिस मनुख दे अंदर प्रभु जी दे प्रेम दी पीड़ा उठदी है भाव पैदा हुंदी है, इस पीड़ा नूं ओही गुरमुख प्यारा जानदा है कि इस नूं किवें सहारिया किवें बर्दाश्त कीता जा सके। क्योंकि इस पीड़ा तो भी रब दे प्यारे आनंद माणदे हन। धन गुरु नानक देव जी श्लोक 12 तो वधीक एक श्लोक उचारण करदे हां इस विचार नूं प्रेम दी खेड दर्शाउंदे हन अते असा संसारी जीवां नूं समझाउंदे हन कि प्रेम दी खेड उही खेड सकदे हन। हे जीव, जे तैनू भी प्रभु नाल प्रेम दी खेड खेडण दा शौक है तां अपना सिर तली उत्ते रख के साहिब कहिंदे मेरी गली विच आ जा। सिर तली ते रखण तों मुराद कदापि इह ना जाननी समझनी कि गुरु साहिब इह दर्शा रहे हन कि अपने धड़ तों सिर नूं अलग करके तली ते हथ ते टिका के मेरे पास आ। इस तरह कीतियां तां जीवन दी लीला ही समाप्त हो जाएगी। दरअसल इहदा रहस कुछ होर है। गुरुदेव दसदे हन कि ऐ प्राणी ऐ मनुख इह खेड खेडण लई लोक लाज छड्ड दे अपने जीवन विचों होमे नूं त्याग के मेरे पास आ। क्योंकि प्रभु प्रीत दे इस रस्ते उत्ते इस मार्ग उत्ते तदों ही पैर टिकाया जा सकदा है जिन्ना चिर असी लोक लाज ते होमे नूं नहीं त्यागदे, उन्ना चिर गुरु दसे मार्ग ते चलना तुरना आसान नहीं है। इस प्रथाए गुरुवाक है, जौ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै। धन गुरु नानक साहिब
ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਇੱਕ

ऐ मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखन कौ तुम एक। इस शब्द का गायन किया सी भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: गुर अमरदास परसिया सिद्ध साधक असासा गुर अमरदास परसिए कोहिम पातक विनाशा गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधक असासा गुर अमरदास परसिए ध्यान लहिए पहो मुक है गुर अमरदास परसिए पहो लबे गौ चुक है एक बिन दो गुण जो तो रहे जास मंत्र मान में लह जाल पाप दारथ इतड़ है गुर अमरदास डिठ है मिल सच नाम करतार सोदड़ नानक संग रहो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरने लेव रहो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण वखानो जो गुण लख अगम तिन्हे गुण अंत ना जानो बोथो बिधाते निर्मयो सब संगत कुल उदरन गुर अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पा शरण
1: आप नारायण कलातार जग मह परवरयो निरंकार आकार जोत जग मंडल करयो जह कहते हैं परपूर शब्द दीपक दीपायो जय सिखे संग रहो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म का प्रसरण तो
2: जप तप सत संतोख पिक दर्शन गुर सिखे जप तप सत संतोख पिक दर्शन गुर सिखे शरण परहते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत पाए भरपूर हृदय उचरे करतारे गुर गोहर दरियाओ पलक डुबन तह तारे नानक कुल निमल अवतरयो गुण कर तारे उचरे गुर अमर

0: चित चितवो अरदास कहूं पर कह भी न सकूं। सर्व चिन तुझ पास सात संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं। गुर अमरदास कारण करन जीव तो रख तिव
1: तिखे गे गुरु ज्ञान और ध्यान तत् स्यों तत् मिलावे। सच सच जानिए एक चित्ते लिवलावे। काम क्रोध वश करे पवन उड़ंत न तावे। निरंकार के बसे देश हुक्म बूझ विचार पावे। कल मैं रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो। गुर मिलियो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो।

0: शीश नवाए क्या थी है जारी दे कसुदे जाहे।
1: बड़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजिस बगल समादंग मुख चूड़ विभुखन सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गलमाला तिलक लाटंग दो तो ती वस्त्रक बाटंग जय जानस ब्रह्मं कर्मं सब होकर निश्चौ कर्मं कहो नानक नहचौति हवै बिन सतगुरु बाट न

कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही किता पावना हुक्म किए मन पाम दे रहे पीड़े गे जावना नंगा दूजक चालिया।

बलजीवाही गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फातह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती स्मर कै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते मरदास राम दास हुई सहाय हर जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे घर नौ निधि आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादे आ चालिया मुकते आ हठिया जपिया तपिया जिन्हां

आवी। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फतह बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री

साहिब हो दयाल कृपा करे ता सहायकार कराए सी सो सेवक सेवा करे इसनो हुक्म बनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदा सो फल पाए सी।

पहला पहला गौ ब्राह्मण को करलावा गोबर तरना जाई तोती टिका ते जो माली तान मले शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बासन जम दुर्गा पाई छोटी ले पखंडा नाम लिया जाय तरंदा महला पहला।